0: Nearly 70% of India's population lives in villages. Experts say villages are key to net zero carbon dioxide emissions. Could they be the key to helping India meet its carbon neutral targets by 2050? But progress in villages is slower compared to cities. Change is slow and old habits die hard. Yet some rural areas have reduced their carbon footprint. How close will your village be to net zero by 2050? Geeta Kumari is an 18-year-old woman who lives in Sirsa Machipur village near Uttar Pradesh's Noida city. About 2,750 people live here. It's not very far from the capital New Delhi but lags behind in terms of development. Geeta is a science teacher at the village's secondary school. Today she is teaching students how to convert temperatures from degrees Celsius to Fahrenheit. She is one of the very few women who completed her education here. Now she is preparing for medical school entrance exams to become a doctor. Most people in her village are involved in agriculture. They rely on non-renewable energy sources.
1: किसान है हमारे गांव में किसान भी है मजदूरी भी करते हैं औरतें घर का काम करती हैं जंगल में जाती हैं नियार वाले ले जाती हैं खेती क्यारी में भी हाथ बढ़ाती हैं भैंसों की भी करती हैं नियार व्याल लाती हैं
0: Almost every village in India shares a similar story, but can they contribute to the country's net neutrality goals?
2: मेरा नाम आशीष चतुर्वेदी है और मैं यूएनडीपी में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का हेड 65-70% जनता अभी भी गांवों में रहती है लेकिन जो क्लाइमेट की प्रॉब्लम है जो जलवायु की प्रॉब्लम है वो गांवों ने क्रिएट नहीं की है वो शहरों के लोगों ने शहर के वासियों ने क्रिएट की है इंडस्ट्री ने क्रिएट की है बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्रिएट की है ये कहने के बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि ऑप्शंस हैं गाँव के लोग भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं जिससे कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम हो
0: सो वॉट एग्जैक्टली इज कार्बन नेट न्यूट्रैलिटी
2: तो अगर हम जब कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस गैसेज निकल कहाँ से रही हैं और फिर या तो हम उन्हें जहाँ से निकल रही हैं उसको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके उसको कम करें या फिर जो गैस निकल रही है उसको हम सिक्वेस्टर या जैसे कहते हैं जंगल पेड़ों में अब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ों को हम और लगाएं
3: हाय मेरा नाम शालू अग्रवाल है एंड मैं एक एनर्जी पॉलिसी रिसर्चर हूँ भारतीय विलेज विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड थ्रू कम्युनिटी सपोर्ट अपने आप को एनर्जी सक्षम बना रहे हैं ऊर्जा सक्षम बना रहे हैं और साथ ही साथ एक पूरा जीने का तरीका ही चेंज हो रहा है
0: बट इन गीताज विलेज मेनी होम्स डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी फॉर दोज हु हैव इट इट इज इरेगुलर एंड कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी
1: बहुत से घर ऐसे हैं जिन पर लाइट बिल्कुल भी नहीं आती मोमबत्तियाँ बैटरियों से काम चला जा रहा है
0: The village's literacy rates are low and school dropout rates are high. This is partly due to a lack of constant energy sources to allow children, especially girls, to study at home.
1: हमारे गांव में जो लड़कियां हैं उनको प्रॉब्लम आती है पढ़ने में क्योंकि उनके घर पर लाइट नहीं है इसलिए वो पढ़े उनके लिए बिल्कुल प्रॉपर मतलब लाइट होनी चाहिए एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो लाइट मतलब जरी रहे
3: 6 लाख से ज़्यादा गाँव हैं इंडिया में एंड लगभग 2/3 जो भारत की संघ पॉपुलेशन है वो गांव में ही रहती है विच इज़ वाई वी से इंडिया लिव्स इन द विलेजेस इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन होने के बावजूद अभी विलेजेस का जो भारत की एनर्जी डिमांड में जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी सिर्फ 1/3 के लगभग है 2000 और 2020 के बीच में लगभग 800 मिलियन पीपल पहले जिनके पास बिजली नहीं थी उनको पहली बार बिजली का कनेक्शन मिला
0: This village Palli is now connected to a 200 kilowatt solar powered mini grid. Shruti Galhotra is 23 years old and is a software developer. She tells us how the mini grid has transformed the lives of people in her village.
4: Solar lights aa gaye

0: तो वो ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं। पहले तो ग्रिड में ही जाती है, उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, सब यूज़ कर सकते हैं। मोटर पंप्स हैं हमारे पानी के लिए घर पे, और फैंस, लाइट्स, वट एवर वी वॉन्ट टू यूज़, रेफ्रिजरेटर, वो सब हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है।
1: भारत सरकार ने एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम लॉन्च की, इसका नाम है पीएम सूर्य घर योजना। और इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम लगभग 1 करोड़ भारतीय घरों तक रूफटॉप सोलर जो है उसको पहुंचाया जाए।
2: All farmers in Geeta's village use heavy industrial pesticides on the crops for better yield, and they grow water-intensive crops such as rice. India is the second largest rice producer in the world. A significant share of the world's rice harvest is produced by wet rice cultivation like this. Besides its significant water footprint, wet rice cultivation is a large contributor to methane emissions.
3: तो हम उन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी बदल सकते हैं। एक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है, डायरेक्ट सीडेड राइस होता है, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो कि फार्मर्स बड़ी इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं और उससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो सकता है।
2: वंस प्रोड्यूस इज ग्रोन, फूड स्टोरेज प्रेजेंट्स अनदर चैलेंज फॉर विलेजर्स। इंडिया वेस्ट 74 मिलियन टन्स ऑफ फूड एवरी ईयर, अ स्टैगरिंग लॉस ऑफ 10.8 बिलियन यूएस डॉलर्स, which makes it world's second biggest food waster. A big factor is the lack of cold storage facilities for the produce. Green energy has helped solve this and brought Majolia village technological advancement.
4: मेरा नाम चंदा कुमारी है और मैं मझौलिया गांव जफा पंचायत बोछम ब्लॉक और मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाली हूं और मैं एक कृषि हूं। पहले मेरे पास कोल्ड स्टोर नहीं था और ना ही अगल बगल में मेरे गांव में था तो बहुत दूर जैसे शहर में था, तो हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। घर लाने के बाद में वो सूखता था, फिर हम दूसरे दिन उसको बाज़ार ले जाते थे तो उसको अच्छा मुनाफा नहीं मिलता था, इसीलिए मेरा सामान ख़राब हो जाता था। उसके बाद में हमारे पास कोल्ड स्टोर आया, ये है जो बिजली से नहीं चल रहा है, ये सिर्फ सोलर से चला है, जैसे सनलाइट, ये सूरज की रोशनी, जैसे धूप से इसको चार्ज होने के बाद में सोलर से ये चलता है। कार्बन का जो फैलना होता है वो नहीं होता है, बिजली का खर्च भी नहीं होता है, सीधा सनलाइट से ये चार्ज होता है और इसे बहुत अच्छा कूलिंग होता है। सोलर के आ जाने के बाद में मेरे पास जो भी सामान होता है और किसान के पास जो भी सामान होता है वो ख़राब नहीं होता है, वो सुरक्षित रहता है।
2: The village of Kapekuna has also introduced innovative solutions to traditional ways of life in a bid to clean up air pollution and increase knowledge and care about the environment.
5: My name is Anjana and I am coming from Kapekuna village in Meenangadi. In Meenangadi, carbon neutrality mainly focusing on the emission sector and carbon sequestration. Here in the emission sector, we are categorized four major sectors: energy, waste, afflu, and transportation sector. And here we can identify the transportation and energy sector will be contributing. We are mainly focusing the afforestation program like tree banking, oxygen park, green island. Here there around 40 varieties of bamboos were planted to initiated the school and supported by the panchayat.
2: The farmers here plant trees which are geotagged. The age and health of each tree is updated on an app. The village council office deposits a few rupees annually into the farmers' bank accounts for each tree, provided they do not cut them. In rural India, the traditional chula stove is still widely used for cooking, but it comes at a steep cost to both people's health and the environment. In homes, the impact can be deadly. Household air pollution from dirty stoves and fuel claims the lives of 3.8 million people annually. The toxic smoke contains harmful gases like carbon dioxide, methane, and fine particles that accelerate global warming. In Geeta's village, most women cook using these traditional chulhas with firewood and cow dung cakes. In Meenangadi, some households are switching to cleaner fuel like biogas. This is a pit used for organic waste, and the chamber converts the waste slurry over time to mainly methane and carbon dioxide.

0: dioxide. This tea is made on the gas supplied through pipes from a biogas plant.
1: Panchayat provide compost pit, soak pit and also the biogas plant.
0: While there are solutions, there are gaps in their smooth implementation. Many solar pumps, cookers and biogas plants remain unused.
2: Har gaon ki problem aur situation bahut unique hai. To aisa nahi hai ki hum ek cookie cutter model laga ke hum sare desh mein ek hi model ko implement karwa sakte hain. To hame ek aisa model taiyar karna padega jisse bade simple tarike se jo ki scientifically acha ho lekin aisa nahi ho ki local log samajh hi na paaye aur kar hi na paaye waisa hame ek model ikhtiyar karna padega jahan bade simple indicators se कि भाई आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो आप काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो एमिशन हो रहा है वो लोकल लोगों को भी समझ में आना चाहिए ये नहीं है कि सिर्फ एक साइंटिस्ट समझ लेगा या एक ब्यूरोक्रेट समझ लेगा और वो इस पूरे प्रक्रिया को पूरे देश में चला पाएगा
3: बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज की बात करें कि सोलर लाओ विंड लाओ बायोमास लेके आओ एग्रीकल्चर को नेचुरल फार्मिंग करो एवरीथिंग requires finance. सब्सिडी सपोर्ट होना चाहिए सरकार का पर सिर्फ सब्सिडी के माध्यम से स्केल नहीं हो सकते प्रोग्राम्स जिसके लिए हमें बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा जिसके लिए हमें अफोर्डेबल पेशेंट कैपिटल चाहिए इस फाइनेंस के माध्यम से हम गांव-गांव तक ये टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बनाएं
0: रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट इज ऑल्सो अ बिग गोल फॉर मीटिंग लोकल क्लाइमेट एक्शन प्लान्स गीता वॉन्ट्स हर विलेज टू बी क्लीन शी वॉन्ट्स पीपल टू रिड्यूस वेस्ट एंड कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन
4: हमारे गांव का तालाब इसलिए सिकुड़ रहा है क्योंकि जो भी कूड़ा है उस गांव के तालाब में फेंका जा रहा है हमारे गांव पे सड़कों पे भैंस बनती हैं बुग्गी भी और जो गोबर है ना जो गोबर उसे भी डाल दिया जाता है सड़कों पर ही पानी वानी पीवे बोतलों से उनको नई सड़कों पर फेल देते हैं वैसे जंगल वंगल में ऐसे चले जाते हैं टॉयलेट वगैरह करने हमारे गाँव में हाँ ये सुविधा नहीं है टॉयलेट गंदगी से बच्चे बीमार हो जाते हैं उनको बुखार वगैरह आ जाता है और
0: Minangadi shows a path ahead here as well.
1: We are achieved 100% of the waste management through the Haridakarma Sena waste collection and the segregation process. Each the wards they are assigned two peoples to collect the waste in the household level. Primary separation done in the household level also. Then the waste are going to the centralized segregation center in Minangadi Panchayat. There we have done the process of shredding, baling and separation also. After the separation, we can identify that the color plastic, white plastic, cardboard, thermocol, bottles, plastic bottles and glass bottles etc.
0: Will Geeta's carbon neutral dream for her village come true?
4: मेरा सपना ये है कि आगे आने वाला जीवन साफ सफाई ज़्यादा हो सड़क चौड़ी हो सड़कों के जो गंदगी वो ना फैले और जो हमारे पानी है वो स्वच्छ रहे गांव का तालाब का पोखर का जो पानी है वो स्वच्छ रहे और वहाँ कूड़ा करकट मतलब ज़्यादा तालाबों में ना फेंका जाए और जो हमारे आसपास पेड़ होने चाहिए पेड़ पौधे होने चाहिए जैविक खाद का भी उपयोग जरूरी है केमिकल दवाई ज़्यादा ना यूज ना होनी चाहिए क्योंकि उनसे किसानों को प्रॉब्लम होती है पर लाइट नहीं है यहाँ बिल्कुल प्रॉपर मतलब लाइट होनी चाहिए एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो लाइट मतलब जरी रहे जो लेडीज है उनके लिए गैस सुविधा होनी चाहिए जिससे कि उनको खाना पकाने में कोई प्रॉब्लम ना हो गैस चूल्हे पर ही रोटी बनाएं

0: Almost every village in India shares a similar story, but can they contribute to the country's net neutrality goals?
1: मेरा नाम आशीष चतुर्वेदी है और मैं यूएनडीपी में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का हेड हूँ। 65-70% जनता अभी भी गांव में रहती है, लेकिन जो क्लाइमेट की प्रॉब्लम है, जो जलवायु की प्रॉब्लम है, वो गांव ने क्रिएट नहीं की है, वो शहरों के लोगों ने, शहर के वासियों ने क्रिएट की है, इंडस्ट्री ने क्रिएट की है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्रिएट की है। ये कहने के बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि ऑप्शंस हैं, गांव के लोग भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं जिससे कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम हो।
0: सो व्हाट एग्जैक्टली इज कार्बन नेट न्यूट्रैलिटी?
1: तो अगर हम जब कार्बन न्यूट्रैलिटी की बात करते हैं तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस गैसेज निकल कहाँ से रही हैं, और फिर या तो हम उन्हें जहाँ से निकल रही हैं उसको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ करके उसको कम करें, या फिर जो गैस निकल रही है उसको हम सिक्वेस्टर, या जैसे कहते हैं जंगल पेड़ों में अब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो पेड़ों को हम और लगाएं।
2: हाय, मेरा नाम शालू अग्रवाल है एंड मैं एक एनर्जी पॉलिसी रिसर्चर हूँ। भारतीय विलेज विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड थ्रू कम्युनिटी सपोर्ट अपने आप को एनर्जी सक्षम बना रहे हैं, ऊर्जा सक्षम बना रहे हैं, और साथ ही साथ एक पूरा जीने का तरीका ही चेंज हो रहा है।
0: बट इन गीताज विलेज मेनी होम्स डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। फॉर दोज हु हैव इट, इट इज इरेगुलर एंड कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी।
3: बहुत से घर ऐसे हैं जिन पर लाइट बिल्कुल भी नहीं आती, मोमबत्तियाँ बैटरियों से काम चला जा रहा है।
0: The village's literacy rates are low and school dropout rates are high. This is partly due to a lack of constant energy sources to allow children, especially girls, to study at home.
3: हमारे गांव में जो लड़कियां हैं उनको प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, क्योंकि उनके घर पर लाइट नहीं है, इसलिए वो पढ़े, उनके लिए बिल्कुल प्रॉपर मतलब लाइट होनी चाहिए, एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो लाइट मतलब जरी रहे।
2: 6 लाख से ज़्यादा गाँव हैं इंडिया में, एंड लगभग 2/3 जो भारत की संग पॉपुलेशन है वो गांव में ही रहती है, विच इज़ वाई वी से इंडिया लिव्स इन द विलेजेस। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन होने के बावजूद अभी विलेजेस का जो भारत की एनर्जी डिमांड में जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी सिर्फ 1/3 के लगभग है। 2000 और 2020 के बीच में लगभग 800 मिलियन पीपल पहले जिनके पास बिजली नहीं थी उनको पहली बार बिजली का कनेक्शन मिला।
0: This village Palli is now connected to a 200 kilowatt solar powered mini grid. Shruti Galhotra is 23 years old and is a software developer. She tells us how the mini grid has transformed the lives of people in her village.
4: Solar lights aa gayi hain to wo automatically chalti rehti hain. Pehle to grid mein hi jati hai, uske baad hame electricity milti hai. Sab use kar sakte hain, motor pumps hain hamare pani ke liye ghar pe. और फैंस, लाइट्स, वट एवर वी वॉन्ट टू यूज़, रेफ्रिजरेटर, वो सब हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है।
2: भारत सरकार ने एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम लॉन्च की, इसका नाम है पीएम सूर्य घर योजना, और इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम लगभग 1 करोड़ भारतीय घरों तक रूफटॉप सोलर जो है उसको पहुँचाया जाए।
0: All farmers in Geeta's village use heavy industrial pesticides on the crops for better yield, and they grow water-intensive crops such as rice. India is the second largest rice producer in the world. A significant share of the world's rice harvest is produced by wet rice cultivation like this. Besides its significant water footprint, wet rice cultivation is a large contributor to methane emissions.
1: तो हम उन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी बदल सकते हैं। एक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है, डायरेक्ट सीडेड राइस होता है, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो कि फार्मर्स बड़ी इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, और उससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो सकता है।
0: वंस प्रोड्यूस इज ग्रोन, फूड स्टोरेज प्रेजेंट्स अनदर चैलेंज फॉर विलेजर्स। इंडिया वेस्ट 74 मिलियन टन्स ऑफ फूड एवरी ईयर, अ स्टैगरिंग लॉस ऑफ 10.8 बिलियन यूएस डॉलर्स, which makes it world's second biggest food waster. A big factor is the lack of cold storage facilities for the produce. Green energy has helped solve this and brought Majolia village technological advancement.
5: मेरा नाम चंदा कुमारी है और मैं मझौलिया गांव झपा पंचायत बोछम ब्लॉक और मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाली हूँ, और मैं एक कृषि हूँ। पहले मेरे पास कोल्ड स्टोर नहीं था और ना ही अगल बगल में मेरे गांव में था। था तो बहुत दूर, जैसे शहर में था तो हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। घर लाने के बाद में वो सूखता था, फिर हम दूसरे दिन उसको बाज़ार ले जाते थे तो उसको अच्छा मुनाफा नहीं मिलता था, इसीलिए मेरा सामान ख़राब हो जाता था। उसके बाद में हमारे पास कोल्ड स्टोर आया। ये है जो बिजली से नहीं चल रहा है, ये सिर्फ सोलर से चला है, जैसे सनलाइट, ये सूरज की रोशनी, जैसे धूप से इसको चार्ज होने के बाद में सोलर से ये चलता है। कार्बन का जो फैलना होता है वो नहीं होता है, बिजली का खर्च भी नहीं होता है, सीधा सनलाइट से ये चार्ज होता है और इसे बहुत अच्छा कूलिंग होता है। सोलर के आ जाने के बाद में मेरे पास जो भी सामान होता है और किसान के पास जो भी सामान होता है वो ख़राब नहीं होता है, वो सुरक्षित रहता है।
0: The village of Kapekuna has also introduced innovative solutions to traditional ways of life in a bid to clean up air pollution and increase knowledge and care about the environment.
6: My name is Anjana and I am coming from Kapekuna village in Meenangadi. In Meenangadi, carbon neutrality mainly focusing on the emission sector and carbon sequestration. Here, in the emission sector, we are categorized four major sectors: energy, waste, afolu, and transportation sector. And here we can identify the transportation and energy sector will be contributing. We are mainly focusing the afforestation program like tree banking, oxygen park, green island. Here there around 40 varieties of bamboos were planted to initiated the school and supported by the panchayat.
0: The farmers here plant trees which are geotagged. The age and health of each tree is updated on an app. The village council office deposits a few rupees annually into the farmers' bank accounts for each tree, provided they do not cut them. In rural India, the traditional chula stove is still widely used for cooking, but it comes at a steep cost to both people's health and the environment. In homes, the impact can be deadly. Household air pollution from dirty stoves and fuel claims the lives of 3.8 million people annually. The toxic smoke contains harmful gases like carbon dioxide, methane, and fine particles that accelerate global warming. In Geeta's village, most women cook using these traditional chulhas with firewood and cow dung cakes. In Meenangadi, some households are switching to cleaner fuel like biogas. This is a pit used for organic waste and the chamber converts the waste slurry over time to mainly methane and carbon dioxide. This tea is made on the gas supplied through pipes from a biogas plant.
6: Panchayat provide compost pit, soak pit and also the biogas plant.
0: While there are solutions, there are gaps in their smooth implementation. Many solar pumps, cookers and biogas plants remain unused.
1: हर गांव की प्रॉब्लम और सिचुएशन बहुत यूनिक है, तो ऐसा नहीं है कि हम एक कुकी कटर मॉडल लगा के हम सारे देश में एक ही मॉडल को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो हमें एक ऐसा मॉडल तैयार करना पड़ेगा जिससे बड़े सिंपल तरीके से, जो कि साइंटिफिकली अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि लोकल लोग समझ ही ना पाएँ और कर ही ना पाएँ, वैसा हमें एक मॉडल इख्तियार करना पड़ेगा जहाँ बड़े सिंपल इंडिकेटर्स से कि भाई आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो आप काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो एमिशन हो रहा है वो लोकल लोगों को भी समझ में आना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ एक साइंटिस्ट समझ लेगा या एक ब्यूरोक्रेट समझ लेगा और वो इस पूरे प्रक्रिया को पूरे देश में चला पाएगा।
2: बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ की बात करें कि सोलर लाओ, विंड लाओ, बायोमास लेके आओ, एग्रीकल्चर को नेचुरल फार्मिंग करो, एवरी थिंग रिक्वायर्स फाइनेंस। सब्सिडी सपोर्ट होना चाहिए सरकार का, पर सिर्फ सब्सिडी के माध्यम से स्केल नहीं हो सकते प्रोग्राम्स, जिसके लिए हमें बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अफोर्डेबल पेशेंट कैपिटल चाहिए। इस फाइनेंस के माध्यम से हम गांव-गांव तक ये टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बनाएंगे।
0: रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट इज ऑल्सो अ बिग गोल फॉर मीटिंग लोकल क्लाइमेट एक्शन प्लान्स। गीता वॉन्ट्स हर विलेज टू बी क्लीन। शी वॉन्ट्स पीपल टू रिड्यूस वेस्ट एंड कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन।
3: हमारे गांव का तालाब इसलिए सिकुड़ रहा है क्योंकि जो भी कूड़ा है उस गांव के तालाब में फेंका जा रहा है। हमारे गांव पे सड़कों पे भैंस बनती हैं, बुग्गी भी, और जो गोबर है ना, जो गोबर उसे भी डाल दिया जाता है सड़कों पर ही। पानी वानी पी में बोतलों से उनको नई सड़कों पे फेंक देते हैं। वैसे जंगल वंगल में ऐसे चले जाती हैं टॉयलेट वगैरह करने। हमारे गांव में हाँ ये सुविधा नहीं है टॉयलेट। गंदगी से बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको बुखार वगैरह आ जाता है।
0: Minangadi shows a path ahead here as well.
6: We are achieved 100% of the waste management through the Harita Karma Sena waste collection and the segregation process. Each the wards, they are assigned two peoples to collect the waste in the household level. Primary separation done in the household level also. Then the waste are going to the centralized segregation center in Minangadi Panchayat. There we have done the process of shredding, baling and separation also. After the separation, we can identify that the color plastic, white plastic, cardboard, thermocol, bottles, plastic bottles and glass bottles, etc.
0: Will Geeta's carbon neutral dream for her village come true?
3: Mera sapna ye hai ki aage aane wala jeevan saaf safai zyada ho, sadak chaudi ho, sadkon ke jo gandgi wo na phaile aur jo hamare paani hai wo swachh rahe, gaon ka talab ka pokhar ka jo paani hai wo swachh rahe aur wahan kooda karkat matlab zyada talabon mein na fenka jaye। और जो हमारे आसपास पेड़ होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, जैविक खाद का भी उपयोग जरूरी है। केमिकल दवाई ज़्यादा यूज ना होनी चाहिए क्योंकि उनसे किसानों को प्रॉब्लम होती है। पर लाइट नहीं है यहाँ बिल्कुल प्रॉपर, मतलब लाइट होनी चाहिए, एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो लाइट मतलब जरी रहे। जो लेडीज है उनके लिए गैस सुविधा होनी चाहिए जिससे कि उनको खाना पकाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, गैस चूल्हे पर ही रोटी बनाएं।